मुहूर्त विस्तार ऐसे अभी आँखों आई जो दस में वेख रहा है किनू वेख रहा है फरीद जी ने लिखे है फरीदा ए विस गंदला सरिया खंड लिवा व्यो दिया गंदला गंदला भी उत्ते भाई व्यो लबेटी हुई व्यो दिया गंदला उत्ते खंड लबेटी हुई पर विच दहर आई जोगा सिंह ने सोचिया पौड़ियां खानी चढ़ जावा ऊपर नारी ख्याल आया ओ मना आनंदपुर साहब इतों नेड़े है कोई वेख ना लवे अजे नहीं जाना थोड़ा समा ठहर जाते हाँ जिस वेले दुनिया अपने अपने घर हो जाएगी फिर जाओ थोड़ी देर बाद भाई जोगा सिंह सोचिया भी हुण लोकी अपने अपने घर में चले गए कोई नहीं वेखदा तो भाई जोगा सिंह अज इसका मन कमजोर हो चुका है हमें तो हंकार की वेसवा के चबारे भी पहली पौड़ी से पैर रखता है आपके पर इधरों कन्ना आवाज आती है कि

भाई जोगा सिंह कन्ना आवाज पई छत पौड़ी तू पैठा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखना पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा सिंह फिर आंदे फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना

अजे भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई टक रहे है मना जरा खैर। तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आंदे फिर कन्ना आवाज केड़ी

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने

औरत ही आए हैं, तेरे बगैर साड़ी सुरत किन्ने लैनी, कृपा कर किवाड़ खोल ते सानू दर्शन दे।

0: हमको समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिनू आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत ते असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरिया किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडलां वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडलां वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई के माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगी तरपातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदे, अपनी गल दे नाल लगा लैंदे अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदे। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपा भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

0: मृतक कहिया नानका जय है प्रीत नाही भगवंत।
1: बेशक दुनिया दे सुख प्राप्त होवन, सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त हो जावे, बिना नाम तो मन शांत नहीं, बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन, नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहे श्रीवाह। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेका सुख, किसे भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़िया भी सुंदर होन, सुगंधिया भी कपड़िया नू लगिया होन, मन बांछित फल मानदा होवे, मन इच्छे सुख मानदा, किस नाहे भी सूरे, कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदन जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नू समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा, इसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रब चित ना आवई जे नाम चेते नहीं है, ता हजूर कहंदन सो प्रब चित ना आवई विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे, सुंदर भी होवे, चतुर भी होवे, बड़िया ज्ञान दियां बातां भी करता होवे, जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं तां हजूर कहंदे न ओ तां एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच तां अग्गे करनी कीरत वाची है, तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है, कितना को सत्कार है, अग्गे तां ए वाचिया जाना है। कोई चार अखर घट पढ़ लवे, कोई वध पढ़ लवे, पर अगे ए नहीं पुछया जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है, कितनी को माया कठी कीती है। अगे तो भाई करनी कीर्त बाकी है, की करनी कमाई कीती, चौबी घंटिया विचों कितना को समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है। आ मामूली दुकानदार नू वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा है, अज की कमाया है, की गवाया है। मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हन, इसने कदी ख्याल नहीं कीता। ए चेता कराउंदे हन जपन वाले, ए चेता कराउंदे हन महापुरख, ते जिन्होंने उन्हां दे बचना नू पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते, बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हन। मन च सोचिया भाई इसनू कदी सत संगत विच नहीं वेखिया, ते होवे ना ता इसनू बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नू भाई दियो कुछ ते तोरो इसनू, क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला, गुर शब्द ना सुने बो रोल कचोला। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, आप तो उत्ते किसे नू समझदा ही नहीं। कबीर जी जा खड़ोते ए भिखारी समझ के अपने नौकरां नू कह रहा भाई कुछ इसनू दियो ते तोरो। कबीर जी कहन लगे सेठ जी मैं मंगता नहीं, मैं कुछ मंगण लई नहीं आया। आख्या जे तू मंगता नहीं तां व्यापारी है। आख्या मैं व्यापारी भी नहीं, जिस वस्तु दे तुसी वणज करन वाले हो उसका मैं व्यापारी भी नहीं हां। ਤੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਆਖਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੇਠ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਖੜੋਤੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਡੰਗ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਡੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ, ਆਖਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। सेठ ने अपने नौकरां वाल घूर के अखां लाल करके आख्या तुहाडे कोल इक्को बंदा नहीं मुड़दा, अज इसनूं ऐसी मार दिओ कि इत्थे आउण जोगा ही ना रहे। कबीर जी कल्ले सन, सारे नौकर उन्हां नूं पै गए। लहू लुहान कर दिता। कबीर जी जदों उठन लगे ना ते कहन लगे, ओए सेठ तेरी तां उम्र ही थोड़ी रह गई है, क्योंकि जेड़े महापुरखां नूं गुरमुखां नूं पले पुरशां नूं सताउंदे हन ओ एवें समझ लैण जिवें अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। जेड़े जुलम करदे हन संतां महापुरखां भगतां दे उपर ओ कलंकी भी हो जांदे हन और नष्ट भी हो जांदे हन और फिर उन्हां दा नाम माड़ियां अखरां विच पुकारिया जांदा है। जिवें रोज तुसी कहंदे हो हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, उन्हां दा नाम दुष्ट करके पुकारिया जांदा है जो भगतां नूं सताउंदे हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी आ गए। इधर सेठ समा अपना व्यर्थ गवा के गुजर गया। काफी समा बीतन दे बाद कबीर जी जा रहे हन सैर करते हुए ते की वेख्या एक बड़ा वड्डा कट होया हुआ है। आख्या की है? किसे ने दस्या जी बैल बेहोश होके डिग पिया क्योंकि उदे उपर भार बहुत लद्या होया सी, इतना भार खिंच नहीं सकिया ते बेहोश होके डिग पिया। कबीर जी ने जदों जाके वेख्या अंतरदृष्टि दे नाल जदों जाके तकिया ते की वेखदे हन भई इह तां उसे ही शेठ दी रूह है जिन्हों बारंबार कहंदे रहे सी भई जपिया कर श्री वाहिगुरु। तां कबीर जी ने शब्द उचारण कीता, चार पांव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा परे ही तब कत मूंड लकई है, हर बिन बैल बिराने होई है। ओ हरि दे सिमरन तो बिना बैल भी जूनी जी पैना सी ना। कबीर जी कोल सारा ही जितने लोग खड़े सी कबीर जी कोल आके चुरमुट पा लिया। कबीर जी ने सारी साखी सुनाई ते सारिया लोगों ने बेनती कीती, कबीर जी हुण साडे ते कृपा करो, ए जूनिया ए दुख सानू ना भोगना पवे, कोई ऐसी जुगत दसो। तां कबीर जी आखरी तुकां विच दस रहे हन कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। अखीर विच आप कहंदे हन कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत कर जाएगा। आप कहंदे हन भाई जिन्हां नूं सत संगत प्राप्त है वो संसार सागर तो तर जाणगे। आखरी तुकां विच कबीर जी दस रहे हन।

महाराज जी बाणी चाहते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक टांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखते हैं, नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, केंद्र जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती की तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रास्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नूं जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने यह मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र का जाप करो, साधु ये मार्ग दसते हैं, हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। सिंपल गल, आसान गल, साधु ने यह नहीं कहा मेरी पूजा करो, यह नहीं कहा कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा गुरु का मंत्र जपो, गुरु दे नाल जोड़ेगा, प्रपेयर करेगा, समझाएगा, घड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझने वाला है, साधु ने यह नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो,

गुजरी जी ने जदों अपने नन्ने पोत्यां दी दर्दनाक वार्ता सुनी तां असह कष्ट दे सदमे नाल उन्हां दी आत्मा भी परवाज कर गई, जिस विचों ये बोल निकले कि मेरे प्यारे लाडले बच्चियो, मेरे लाल दे लालो, जरा ठहरना, मैं तुहानू लोरियां दे के, थपकियां दे के सवाउण लई तुहाडे कोल उड़ के आ रही हां। अज किथे ने वह मरदूद मर्द जिन्हां ने चंद टकियां दी खातर अपने धर्म नूं तलांजली दे के अपनी इज्जत नूं छिके टंगिया। गंगू दी गदारी नाल जुल्मां भरे इतिहास का एक होर पन्ना भर गया। इस डकूए नाल हर आत्मा झंझोड़ी गई अते बेचैन हुए हर हिरदे विचों आप मुहारे गंगू गदार लई यही बद्दुआ निकली।